बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

0: जय हो बेटियों की। जी हाँ दोस्तों, ये जय हमारे देश की बेटियों की है और आपको बताएं कि हमने जीत लिया। जी हाँ, ये जंग जो था वो भी हमने जीत लिया। वैसे जीत की खुशी के साथ पॉपी हाजिर है आपके साथ ओनली ऑन 107.7 FM रेनबो पर, जहां आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है और हर जीत की तरह ये जीत भी पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। वैसे साथ में आज एक और खुशी भी हम मना रहे हैं, वो है हिंदी दिवस की। बहुत सी बातें करेंगे, सुनते रहिए, साथ रहिए और गीतों का मजा लेते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पॉपी के साथ ओनली ऑन 107।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉन स्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो।

नहीं दोस्तों, रोने की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे खुशियों की। और आज खुशी का जो इजहार हम कर रहे हैं वो है एक बड़ी जीत के कारण, एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है उसी की खुशी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे आज एक और वजह भी है खुशी की, वो ये कि पूरा देश मना रहा है भारत भाषा दिवस, यानी कि हिंदी भाषा दिवस मनाया जा रहा है। और ये हिंदी भाषा, हिंदी दिवस पर आज हमारा ये कार्यक्रम, मतलब बहुत सी बातों के लेकर हम बात करते हैं आज, ये भी हमारे भाषा दिवस, मतलब हिंदी भाषा दिवस के बारे में बातें करेंगे हम। तो इसके लिए भी आप सुनते रहिए, साथ रहिए। और आपको बता दें कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये दिवस हमें याद दिलाता है, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है और संस्कृति की बेटी होने के कारण हिंदी में वैज्ञानिकता है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ये देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर कोहिमा से कच्छ तक कोई व्यक्ति यदि एक भाषा से काम चला सकता है तो वो है हिंदी। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद से लेकर आज के डिजिटल युग तक हिंदी ने कभी अपना रूप नहीं खोया, बस नया रूप समय समय पर धारण करता गया। हमने हिंदी को मातृभाषा तो माना, पर काम की भाषा शायद कभी कभी अंग्रेजी बना लेते हैं। हम हिंदी में सोचते हैं, सपने हिंदी में देखते हैं, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू में अंग्रेजी में लड़खड़ाते हुए बोलते हैं। वैसे सबसे बड़ा अंग्रेजी का खतरा है कि कभी कभी हमारे भीतर ये हीन भावना को जन्म दे देता है। लेकिन हिंदी की तो बात ही कुछ और है। आज हिंदी कमजोर नहीं बल्कि सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा इसका बाजार है। कोई भी आप सोशल मीडिया ले लीजिए या फिर आप OTT प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, सब जगह कंटेंट क्रिएटर हिंदी में, लेखक हिंदी में, ट्रांसलेटर अनुवादक हिंदी में, डबिंग आर्टिस्ट हिंदी में, मतलब और इसकी जो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा है इनकी डिमांड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब हिंदी सीख रहा है, यानी हिंदी अब दिल की ही नहीं बल्कि रोजी रोटी की भी भाषा बन चुकी है।

इमोशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहने की बात अगर हम कहें तो वो तो हिंदी हो। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, तै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूल सब होए। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए सोए, लाख उपाय अनेक यतन करहू नस होए। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूलता सोग। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में जो लखियो पर भाषा नहीं पात। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लह करूं भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मत हूं विविध भाषा विविध लखात। सब मिलता सो छाड़ के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहू अहो भ्रातगण आए। तो यही बात है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना किसी भी प्रकार का उन्नति हम सोच भी नहीं सकते। अपनी भाषा की उन्नति से ही हर प्रकार की उन्नति हम पा सकते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि सारी उन्नति का जड़ जो भाषा में है वो है हिंदी भाषा। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना दिल की जो पीड़ा है ना वो बयां नहीं होती, कहीं ना कहीं पिछड़ापन खत्म नहीं होता। वैसे एक बात दोस्तों आपको बताना ही होगा, मैं बताना चाहूंगी और ये समझना ही होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे सन 1877 में, जी हाँ तब लिखा था जब अंग्रेजी हुकूमत में पढ़े लिखे

भारतीय अपनी ही भाषा को बोलने में शायद कहीं कतराते थे। उन्होंने कहा था, तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, तुम्हारा समाज, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा रोजगार तभी बढ़ेगा जब तुम अपनी भाषा में सोचोगे और काम करोगे। और शायद इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा सबके सामने आई और आज हम खुश हैं कि पूरा देश इस भाषा को मना रहा है, इस हिंदी भाषा दिवस को मना रहा है अपने अपने तरीके से, अपने अपने जिम्मेदारियों के साथ। और हम भी मना रहे हैं, जी हाँ, 107 FM रेनबो के स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं आज हिंदी भाषा के ऊपर। और आप भी, जी हाँ, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं 2213-1341 पर, क्योंकि मुझे आपका बेहद इंतज़ार है, आपसे हमारी बातें होनी चाहिए। भाई वो कहते हैं ना, कार्यक्रम का नाम है गपशप, तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू कनेक्ट। जी हाँ, लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी हिंदी में हो तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा।

0: तो ये गीत आपने सुना टाइटल सॉन्ग दीवानी मस्तानी से, और देखते हैं कोई दीवाना हम तक पहुंच चुका है, कौन है दीवाना या दीवानी ये मुझे मालूम नहीं जब तक मैं उसकी आवाज न पहचानूं। हेलो
1: हेलो सुप्रभात।
0: सुप्रभात, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आज के खास दिन में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बंगाली हूँ तो बंगाली उसके हमेशा बोलते हैं कि हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं हमेशा हिंदी लैंग्वेज को काफी, मुझे लगा कब काफी इजी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे एक फायदा हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से मैक्सिमम ही हिंदी स्पीकिंग है, तो उन लोगों के साथ बात करते करते मैंने कभी हिंदी नहीं सीखा उस तरह से। लेकिन स्कूल्स में 2 साल था, लेकिन बहुत प्राइमरी लेवल में, तो मुझे बाद में लगा कि अगर, क्योंकि हिंदी ऑल्दो नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कंट्री का, तो एक लैंग्वेज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो और सब एक ऐसा लैंग्वेज जो सारे मतलब पूरे कंट्री में जो इस मतलब बोले जाते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मौका मिले तो मैं हिंदी में बात करूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज जो मेरे लिए एक ऐसा एंटिटी है कि जो मैं कभी बोला नहीं, बचपन से ही मैं बंगाली या इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल था। लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता है जब कुछ देखता हूँ टीवी में या कुछ कहीं पर भी जहाँ पर नए नए वर्ड्स मुझे मालूमात मतलब मुझे मालूम होता है, तो मैं याद रखता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस में ऐसा यूज किया जाता है। तो लैंग्वेज चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज सीखना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे प्रॉब्लम मुझे जो होता है वो है नदी बहती है सूरज उगता है, तो वो जो चीज है उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा जेंडर यूज करूँ। बाकी मुझे लगता है कि हिंदी का प्रचार ज्यादा होना चाहिए, और जैसे बंगालीज में भी काफी मात्राएं होती हैं, तो मुझे बंगाली कुछ कुछ वर्ड्स इतने कठिन लगता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे मदर टंग है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मदर टंग नहीं है वो मैं यूज करूँ, मैं ज्यादा बोलने की कोशिश करूँ। और आज जितना भी बोल पा रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि मैं बोलता हूँ काफी ज्यादा, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि दोस्त लोग सब मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग है।
0: ये जो आपने बात कही ना कि कम्युनिकेशन जो है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि भले लिंग के लिए, मतलब हमारे भाषा में जो आपने कहा ना कि सूरज उगता है नदी बहती है, ये भले हम इसका ज्ञान अगर हमें कम भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो असल बात है ना कि आपके दिल की भाषा, दिल की बात जो दूसरों तक हम पहुंचाएं, वो कम्युनिकेट हम कर पाए, सबसे बड़ी बात वो होती है। देखिए कोई भी चीज में, कोई भी, हम भी शायद 100% परफेक्ट नहीं है, शायद क्या नहीं है, ये 100% है कि हम परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन पाना या परफेक्शन के ऊंचाइयों को पहचानना

0: ये बात नहीं है, बात है कि कोशिश, हम कहाँ तक कितनी कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए। अब मान लीजिए, आप कहीं अपने शहर को छोड़कर बाहर जाते हैं तो मान लीजिए आप गुजरात गए, आपको गुजराती नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको हिंदी तो आती है। जी हाँ,
1: अच्छा, यूनिवर्सल लैंग्वेज,
0: यस। और अगर आप अपने भाषा में, अगर मान लीजिए उसमें वही बहती है, बहता अगर नहीं भी होता है, आपको अगर चाय चाहिए तो वो सामने वाला आपको चाय देगा, आपको आपको आलू नहीं पकड़ाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो दिस इज द थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, कि ये जो भाषा जो होती है ना, हमें एक दूसरे से जोड़ती है, तो वो चीज होनी चाहिए। बस समझ थोड़ी बहुत सबको होनी चाहिए इस भाषा की, क्योंकि एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा व्यापक देश है, जहाँ पे न जाने कितने सैकड़ों भाषा है, ट्राइबल लैंग्वेज है, आंचलिक भाषा है, उसमें एक तो जोड़े किसी को जोड़े।
1: और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो चाहे वो जेंडर में प्रॉब्लम आ जाए कि पता नहीं चला, लेकिन काफी इजी है। मुझे लगता है हिंदी एक, क्योंकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बनाया गया था कि एक ऐसा लैंग्वेज हो जो सबके लिए कम्युनिकेशन में सुविधा हो,
0: बिल्कुल,
1: कि सब बोल पाए। क्योंकि साधन कंट्री, साधन इंडिया में जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लोग चेन्नई जाते हैं या फिर ऐसे जगह में, यहाँ पर हम लोग बोल नहीं पाएंगे तमिल या तेलुगु, और लेकिन वो लोग समझते हैं हिंदी और वो लोग बोलने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा लैंग्वेज तमिल है मैं क्यों बोलूं, ऐसा नहीं। तो अच्छा है कि हिंदी ज्यादा लोग बोले, कोशिश करें, क्योंकि ये एक चैलेंज की तरह है
0: जी।
1: कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोशिश करूंगा बोलने के लिए, ताकि सबके लिए सुविधा हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूं ही जुड़ा कीजिए, साथ रहिए, सुनते रहिए। वैसे अगला जो गाना मैं आपको सुनाऊंगी वो वादा है मेरा, बिल्कुल आपसे पूरी तरह से मैं वादा करती हूँ 100% कि वो गाना मैं हिंदी में ही सुनाऊंगी।
2: This is something

दोस्तों, अभी अभी जिस गीत को आपने सुना वो हमने लिया था पटियाला हाउस से। वैसे एक बात आपको बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड में काफी अन्य भाषाओं का, भले बेस हिंदी हो, लेकिन कभी कभी देखते हैं आंचलिक भाषा का इन्फ्लुएंस प्रभाव रहता है। लेकिन आपको आज के दिन बताते हुए खुशी हो रही है कि एक गीतकार ऐसे थे, जी हाँ, अब शायद इस दुनिया में नहीं है, शायद क्या नहीं है, सन 1982 में वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनका नाम था भरत व्यास। जी हाँ, भरत व्यास, जिनकी गीतों की एक अजीब, मतलब वो कहते हैं रूहानी बात थी, जी हाँ, दिल को छूने वाली, हृदय स्पर्शी होती थी। और उनके गीतों की एक खासियत ये होती थी कि उन्होंने अपने गीतों में कभी भी किसी भी उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ए मालिक तेरे बंदे हम, आ लौट के आजा मेरे मीत, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, निर्बल से लड़ाई बलवान की। जी हाँ दोस्तों, ये सभी गीत उन्होंने लिखा, तेरे सुर और मेरे गीत, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ओ निर्दयी प्रीतम, जी हाँ, स्त्री फिल्म से ओ निर्दयी प्रीतम, तो ये सारे गीत उन्होंने लिखे। लेकिन जो भी गीत उन्होंने लिखे शुद्ध हिंदी भाषा में लिखे, उन्होंने कभी भी अपने गीतों में किसी भी उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ये थी उनकी खासियत। फिलहाल 10:45, अगला गीत हम आपको सुनाएंगे सोनू निगम और श्रेया की आवाज में। सुनते रहिए, साथ रहिए 107.7 FM रोनबो पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस के ऊपर और बहुत सी बातें हो रही हैं अपने दोस्तों के साथ, ओनली ऑन 107।

चुटके नुस्खे। एक चुटकी नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे मॉनसून में मतलब ह्यूमिडिटी से कपड़ों में सीलन, बदबू और फंगस जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, छट से बता देती हूँ। जी हाँ, कपड़े थोड़ा कम डिटर्जेंट से धोइए, ये नहीं कि ज़्यादा डिटर्जेंट डालेंगे तो ज़्यादा साफ होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कपड़े में डिटर्जेंट जब डालें तो थोड़ा डालिए और अंत में एक मग पानी में थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल के खंगालिए। इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों से वो जो बदबू आती है ना, वो बदबू निकल जाएगी। और अंदर सुखाना पड़े तो फैन के नीचे हैंगर पर फैला के सुखाइए, एक दो कपड़े चिपका के बिल्कुल मत सुखाइए। और हो सके तो 10 मिनट आयरन की हल्की हीट दे दीजिए ताकि थोड़ी बहुत अगर उसमें मॉइस्चर बची होगी तो वो निकल जाएगी। साथ ही अलमारी कभी भी ठूसे हुए कपड़े से मत रखिए, मतलब कहते हैं ना कि उन्हें थोड़ा हवा आने दो, भाई थोड़ा उन्हें भी हवा लगना चाहिए। और हर खाने में कुछ नीम की पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 रुपये मुश्किल से लगेगा आपका। जी हाँ, और सिलिका जेल पाउचेस थोड़ा सा कॉस्टली है, या फिर चौक रख दें, ये नमी खींच लेता है। कैम्फर या नैप्थलिन बॉल्स भी काम करते हैं, पर इनका प्रॉब्लम यह है कि बच्चों से इन्हें दूर रखना पड़ता है। हर बार हफ्ते में अलमारी को 15 मिनट तक खोली छोड़ दें,

एकदम, लेकिन लगाम को नहीं छोड़ना है, वो जो ज़ुबान की जो लगाम है उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं खुली छोड़ना है, केवल अलमारी को छोड़ना है। तो ये ये थोड़ी बहुत नुस्खे जो आप यूज़ करके अपने कपड़ों को चमका सकते हैं, महका सकते हैं, खुशबूदार बना सकते हैं। फिलहाल आइए और भी बातें हैं बताएंगे, सुनते रहिए, साथ रहिए द नेक्स्ट ट्रैक ज़ूबी डूबी, सोनू श्रेया की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म 3 इडियट्स।

आज के दिन। 54 past 10 यानी कि 54 मिनट 54 सेकंड हो गए हैं 10 बजकर, और टाइम हो रहा है आपको आज के दिन की खासियत के बारे में बताने की। तो सुन लीजिए, आज के दिन सन 1867 में कार्ल मार्क्स ने 10 कैपिटल किताब की पब्लिश की थी। आज ही के दिन शोले के निर्माता जीपी सिप्पी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन, जी हाँ, सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर रमैक 305 लॉन्च किया गया था। आज ही के दिन सोवियत यूनियन का लूना 2 चांद पर उतरने वाला पहला यान बना। वहीं आज ही के दिन 1960 में तेल उत्पादक देशों ने OPEC की स्थापना की थी। और तो और, जो सबसे खास बात है, आज ही के दिन साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकन पार्लियामेंट को संबोधित किया था। तो ये थी आज के दिन की खासियत। लेकिन एक जो सबसे खास बात है, वो तो मुझे बताना ही हुआ कि आज के दिन, जी हाँ, आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम भारतवासी हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, खास करके आज के दिन, क्योंकि आज की जो भाषा है वही हमारी और आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो इट्स गुड कि आपके साथ आज मेरी बात हुई। और टाइम फॉर मी टू रैप अप, और रैप करते करते आपको छोड़े जाती हूँ विशाल मिश्रा के साथ, एक खूबसूरत गीत के साथ, ओनली ऑन 107। लेकिन भूल न जाइएगा कि हम और आप एक बार फिर जुड़ेंगे कहाँ पर, 100.1 FM गोल्ड पर, लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आपकी दोस्त सविता आप पहुंची है दोपहर में लेकर स्टूडियो में आपका हमारा सबका पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ तीन का तड़का, जिसे सुन के आपका दिल है धड़का।

दोस्तों, स्त्री टू के ट्रैक आज की रात से शुरुआत हो चुकी है, आज के दोपहर की। बिल्कुल दोस्तों, हमने ये वादा किया है कि आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ट्रैक जो नहीं देंगे आपको सोने। जी हाँ, दोपहर की नींद कुछ लोगों को बहुत प्यारी होती है, तो हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ट्रैक जो उड़ा देंगे आपकी नींद। मैं हूं आपकी दोस्त, एक बार फिर से करती हूं स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम तीन का तड़का में लेकर आ गई, और फिलहाल आपके लिए परियोजना प्रस्तुति। जी हाँ, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक परियोजनाओं में से एक ना एक दिन हम किसी ना किसी परियोजना पर प्रकाश डालते हैं ताकि आप उनका सीधा सीधा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज की जो परियोजना प्रस्तुति है वो है अन्नपूर्णा योजना इन पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के भीतर भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्नपूर्णा योजना का जो उद्देश्य है राज्य में रहने वाली पात्र महिलाओं को सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुनिश्चित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। लक्ष्मी भंडार योजना के मौजूदा लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के अधीन अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित किया जाता है। नए आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से उपलब्ध है, और इसके जो फायदे हैं वो आपको बता दें। मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये, साथ ही वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। बैंक खाते की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि यह राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है। और इसके जो पात्र हैं वो हम बता दें कि आवेदक महिला होनी चाहिए, आवेदक की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक किसी भी प्रकार की स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय निकाय के अधीन नियमित वेतन पेंशन प्राप्त हो, या इस राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान आदि के अधीन शिक्षण या गैर शिक्षण पद पर कार्यरत ना हो, आवेदक किसी भी प्रकार का आयकर ना चुका रहा हो। तो ये है पात्रता, और इसकी जो आवेदन है वो आप चरण वन में कर सकते हैं अन्नपूर्णा योजना आवेदन पोर्टल पर। ड्रॉप डाउन से जिले का नाम चुनें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। दूसरा है, अगली विंडो में पारिवारिक स्तर डेटा संग्रह फॉर्म दिखाई देगा, परिवार के मुखिया की सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, उसके बाद अन्य सदस्यों की जानकारी भी दर्ज करें, संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन आईडी नोट कर लें। तो दोस्तों, ये है आवेदन प्रक्रिया और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है ये आपको बता दें। आधार कार्ड चाहिए, एपिक कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड डिटेल्स यदि हो, पैन कार्ड फैमिली मेंबर्स की, लैंड डिटेल्स यदि हो, और स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर यदि आपके पास है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की अन्नपूर्णा योजना की, जिसका कि आप उठा सकते हैं लाभ। फिलहाल जोबिन नौटियाल की आवाज़ में सुनेंगे ये ट्रैक।

जी हाँ दोस्तों, स्वीकार जी, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम 3 का तड़का में। और आज हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह होने वाली कौन सी वो फिल्में हैं जो रिलीज़ हो रही हैं, ताकि आप एंजॉय कर सकें। लेकिन फ़िलहाल तो तू ही साहिबा।

0: Pop Culture.
1: जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह कौन सी वो फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनका एंजॉय आप कर सकते हैं वीकेंड्स पर। फिल्म दायरा, जी हाँ, 18 सितंबर 2026 को हो रही है रिलीज। सच्ची घटनाओं से प्रेरित दायरा एक रोमांचक खोजी थ्रिलर है जो डीसीपी रमन कुमार और डीसीपी अजूनी कोहली के इर्द गिर्द घूमती है। जब एक विवादास्पद मामला उनके एक व्यवस्था के दो विपरीत पक्षों पर खड़ा कर देता है, जैसे जैसे उनके रास्ते आपस में टकराते हैं, फिल्म सच्चाई, जवाबदेही और न्याय की नैतिक सीमाओं की पड़ताल करती है, जिससे दर्शक इसके मूल में मौजूद सवालों का सामना करने के लिए हो जाते हैं मजबूर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कलाकार कौन है, तो दोस्तों बता दें आपको, रमन कुमार के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन ने भूमिका निभाई है, वहीं अजूनी कोहली के रूप में है करीना कपूर। अभिनेता जितेंद्र जोशी और क्षिति जोग भी ने भी अभिनय किया है। इसके अलावा बृहस्पति सरकार भी अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। मेघना गुलजार निर्देशक, लेखक, संपादक हैं, वहीं निर्माता धवल जयंती लाल गाड़ा हैं और निर्माता हैं विनीत जैन। तो दोस्तों आप एंजॉय कर सकते हैं 18 सितंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म दायरा।

जी हाँ दोस्तों, वीकेंड्स में एक फिल्म का और आप एंजॉय कर सकते हैं जो रिलीज़ तो हो चुकी है 11 सितंबर को, और यदि आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लास्ट मैन इन टावर। जी हाँ, अरविंद अडिगा की बेस्ट सेलर किताब लास्ट मैन इन टावर पर आधारित। मास्टर जी एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं जो अपने जीवन को बदल सकने वाले एक प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, और जिससे उनके पड़ोसियों के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, उनका शांत प्रतिरोध समुदाय को अपने विकल्पों, समझौतों और बदलाव के लिए वे क्या बलिदान के लिए तैयार होते हैं, उन्हें इन सब का सामना करने के लिए क्या क्या करने पर मजबूर होना पड़ता है, ये सब जानने के लिए तो देखनी पड़ेगी आपको फिल्म द लास्ट मैन इन टावर। जी हाँ, इसमें भूमिकाएं निभाई हैं मनोज वाजपेयी, दिव्या दत्ता, बोमिनीना ईरानी, सुकांत गोयल, हरीश खन्ना ने, और निर्देशक हैं बैनी रेखी, निर्माता राणा दग्गुबाती, निर्माता गुनीत डोगरा, निर्माता प्रतीक्षा राव, संगीतकार गोविंद बसंत। तो आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। इसके अलावा हनुमान अंश भी आपके शहर में जी हाँ आ चुकी है, और इसके अलावा आप और कौन सी मूवी देख सकते हैं बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आपके लिए विशाल दादलानी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म विकी डोनर से मर जाइयां।

मर जाइया विशाल दादलानी और सुनिधि चौहान की आवाज में सुना आपने ये ट्रैक। जी हाँ, नया वीक शुरू हो गया है और मनोरंजन के शौकीनों को नई फिल्मों और सीरीज का इंतजार होगा ही। क्या क्या है इस बार ओटीटी के पिटारे में, चलिए बता देते हैं आपको। दोस्तों, सिनेमा घर में 6 हफ्ते बाद भी हनुमान अंश छाई हुई है। मिर्जापुर भी बॉक्स ऑफिस की गति पर काबिज है। दायरा और वाइब जैसी फिल्में

इस नए वीक में दस्तक देंगी, ये हमने आपको बताया। और इस बीच ओटीटी पर भी माहौल होगा जबरदस्त, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर से लेकर रोमांटिक सीरीज और फिल्में इस वीक में होंगी रिलीज। इस सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में इस सीरीज की है लस्ट स्टोरी सीजन 3 की। जी हाँ, इस बार आधुनिक रिश्तों, ख्वाहिशों और इमोशंस की थीम पर बनी ये सीरीज दर्शकों का कितना ध्यान आकर्षित करती है देखना दिलचस्प होगा। राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, विजय वर्मा, राधिका मदान, अली फजल और सिद्धार्थ अभिनीत ये सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसे विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है। इसके अलावा मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म थुक्कड़म भी इस सप्ताह दस्तक देगी। जूड एंथोनी जोसेफ निर्देशित ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, इसे काफ़ी पसंद किया गया। अब यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को जियो हॉट स्टार पर रिलीज होने जा रही है। आशीष जो एंटनी और मोहनलाल अभिनीत फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म किया है। आशीष इसमें खलनायक की भूमिका में है। एरी मुडी रवि तेजा की यह फिल्म भी इस सप्ताह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगी। यह एक्शन ड्रामा फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 18 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। तो दोस्तों, इस तरह से तांता लगा हुआ है कई सारी फिल्म सीरीजों का। और फिलहाल परदेश फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का आप सुन रहे हैं और हमारी मंजिल धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचने को है। जी हाँ, 45 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, वक्त सिर्फ 15 मिनट का बचा है और इसमें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी हाँ, आज है हिंदी दिवस, 14 सितंबर हमारा राष्ट्र मना रहा है हिंदी दिवस। किसी भाषा की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती दोस्तों कि उसे कितने लोग बोलते हैं, असली परीक्षा तो ये होती है कि वह बदलते समय के साथ कितनी दूर तक चल सकती है। हिंदी ने समय की इस परीक्षा को कई बार दिया है और हर बार वो अपनी परीक्षा में खरी उतरी है। वह लोक की बोली से साहित्य की भाषा बनी, साहित्य से पत्रकारिता तक पहुंची, पत्रकारिता से प्रशासन की भाषा बनी और फिर कंप्यूटर के पर्दे पर आ बैठी है। अब यह मोबाइल के माइक्रोफोन में हमारी आवाज़ बनकर आप तक पहुंच रही है। जी हाँ दोस्तों, हम और आप बात कर रहे हैं हिंदी में और हिंदी में ही अपने विचारों को कर रहे हैं साझा। तो हमारे शब्दों का दूसरा रूप है हमारी भाषा, जो हम हिंदी में एक दूसरे के माध्यम से अपनी मन की बात को कह डालते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज 77 वर्ष बाद हिंदी दिवस को केवल एक उस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति के रूप में मनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि हम हिंदी को किस तरह से अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं और अपने दायित्व को कैसे निभाते हैं। इस डिजिटल युग में हिंदी अपना दायित्व कितनी बखूबी से निभा रही है, ये तो हम सब देख रहे हैं कि डिजिटल की दुनिया में भी हिंदी भाषा ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। तो दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस पर हिंदी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में।

0: जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का की जो हमारी यात्रा थी वो धीरे धीरे पहुंच गई है पूरी तरह से अपने मुकाम पर, और लास्ट ट्रैक आपके लिए पेश करने का वक्त सविता के सामने आ चुका है, क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि फिलहाल के लिए तो इजाज़त ली जाए, लेकिन इजाज़त लेने के साथ 5:15 चाय एंड क्लासिक्स FM गोड यानी खरा सोना पर हमारी आपकी मुलाकात अवश्य होने वाली है। और 7 बजे जी हाँ आपके साथ मुलाकात होगी हमारी और आपकी छाया लोक में, यहीं FM रेनबो 107 पर। तो जाना कहीं नहीं है, बस चाय पी के थोड़ी देर में, थोड़े से ब्रेक के बाद आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करनी है। तो अंतिम गीत फिल्म कर्ज का ट्रैक सुनवाते हुए आपसे लूंगी मैं विदा। किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो चलिए अंतिम गीत आपके लिए पेश करते करते आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपकी शाम सुहानी हो और मुस्कुराते जरूर रहिए।
1: यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी हाँ हे प्रभु, जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है और जो करोड़ों सूर्यों की संयुक्त चमक के समान तेजस्वी हैं, कृपा करके मेरे सभी कार्यों और उद्यमों को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त रखें। गणपति बप्पा मोर्या। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ आज छाया लोक में हाजिर हो चुकी है आपकी कोई और दोस्त नहीं, जी हाँ मैं हूँ सविता, गणपति बप्पा मोर्या।

जी हाँ, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। बिल्कुल दोस्तों, हम उनकी कृपा और उनके बिना कृपा के हम अपने सभी कार्यों को, उद्यमों को हम मान ही नहीं सकते कि हमारे बिना बाधाओं के हमारे काम हो सकें। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को याद किया जाता है। दोस्तों आज है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। आज राष्ट्रीय पर्व है, सांस्कृतिक उत्सव है और धार्मिक महोत्सव का दिन है। दोस्तों सबके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत में जो हमारी मान्यता है और जो आस्था है भगवान गणेश जी की, उनके बारे में बात करेंगे, जो खुशी लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, सभी बाधाओं को दूर करते हैं और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हम मना रहे हैं। आज उन्हीं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या मना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी पर हम बात ना करें और गणेश जी की बात से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो आज हमने छायालोक में गणेश जी की बात से ही शुरुआत कर दी है। गणेश जी के नाम से ही हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और आप भी दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है, हमें पता है कि आपके जगह जगह पंडाल बने हुए हैं, जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है और गणेश जी को याद किया जा रहा है। सारे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी को याद किया जा रहा है और ये पर्व पूरा 8 दिन चलने वाला लंबा पर्व है। इस पर्व को हम, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। और दोस्तों इस कार्यक्रम को क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस पर थोड़ी सी विस्तार से बात मैं करूंगी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के दिन इनकी पूजा करते हैं, आज के दिन ही नहीं, गणेश जी की पूजा हर वक्त ही की जाती है और हर समय ही की जाती है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी को मनाने की क्या कहानी है, क्या कथा है, ये भी बताऊँगी, लेकिन पहले गीत भी तो सुनवाऊँगी।

जयदेव मंगल मूर्ति, बिल्कुल जयदेव मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की कहानी क्या है, गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे क्या कथा है, क्या ऐसी मान्यता है जिसके कारण ये जो उत्सव है मनाया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे बड़ी ही प्यारी सी एक कहानी है। ये कहानी है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर से, कहते हैं जो चंदन है, जो अपने शरीर का मैल है, उसे एक पुतला बना डाला और उसमें प्राण डालकर उन्होंने उसे एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। अब माता पार्वती ने बालक से कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ पुत्र, और मेरे बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। बस बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो बालक उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता, जिसके कारण भगवान शंकर हो जाते हैं क्रोधित और क्रोध में अपने त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो उस बालक के कटे हुए सिर को देखकर बड़ी दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनके आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे कहती हैं कि वो उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दें। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है उस बच्चे का सिर लेकर आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए गणेश जी की हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा होती है। तो कुछ इस तरह की मान्यता, इस तरह की कथा है गणेश चतुर्थी मनाने की। इसके आगे की धारणा और क्या है वो भी आपके साथ बात करूंगी, लेकिन पहले गीत।

दोस्तों, गणेश उत्सव मनाने का ये राष्ट्रीय पर्व भी है और सांस्कृतिक पर्व भी है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कैसे, बताती हूँ। प्राचीन समय से गणेशोत्सव होता आया है, लेकिन पेशवाओं के शासन में उसका महत्व ज़्यादा बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि पुणे शहर में कस्बा गणपति की स्थापना हमारे हिंदू राजा शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने की थी, मगर उसके बाद से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बना दिया। 1893 में गणेश उत्सव की सार्वजनिक शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। उन्होंने गणेश उत्सव का आयोजन सभी जातियों और धर्मों को एक मंच देने के लिए किया, क्योंकि सब बैठकर मिलकर कोई विचार कर देश के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। गणेश महोत्सव आज के समय में भी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के साथ आज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक महत्व कैसे है, बताओ। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का त्यौहार आमतौर पर अगस्त

यह सितंबर में पड़ता है जब भारत में वर्षा ऋतु होती है और इस मौसम में मिट्टी में नमी बढ़ती है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। गणेश चतुर्थी के समय में मिट्टी की पूजा करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन पर्यावरण शुद्ध करने के लिए किया जाता है। गणेश पूजा स्व जागरण की एक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गणेश पूजा में इंद्रियों पर नियंत्रण करके ध्यान के जरिए अपने अंदर ईश्वरीय तत्व का परिचय हम प्राप्त करते हैं। गणेश चतुर्थी और प्रकृति से भी इसका गहरा संबंध है। किस तरह से, ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले देवा श्री गणेशा अजय गोगावले की आवाज में। फिल्म अग्निपथ।

जी हाँ दोस्तों, सुरों की महफिल छाया लोक में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, रहूँगी पूरे 8 बजे तक। और 8 बजे के बाद आपके साथ मेरे साथी रहेंगे, और वो कौन रहेंगे बताऊँगी, लेकिन फिलहाल तो बताने वाली हूँ कि गणेश चतुर्थी और प्रकृति से इसका संबंध, जी हाँ, इसका गहरा संबंध है। परंपरागत रूप से गणेश जी की जो मूर्तियाँ हैं ना, वो दोस्तों साडू मिट्टी से बनाई जाती थी और प्राकृतिक रंगों से रंगी जाती थी। हाल के वर्षों में पर्यावरण के अनुकूल गणेश चतुर्थी मनाने पर जोर जो बढ़ रहा है, इसमें मिट्टी की मूर्तियों को प्राकृतिक रंगों और आसानी से घुल जाने वाली छोटी मूर्तियों का उपयोग शामिल है, जिससे जल निकायों को कम नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण प्रयासों जैसे पहल आधुनिक गणेश चतुर्थी समारोह का अभिन्न अंग बन गई हैं। दोस्तों, इस उत्सव का सबसे मुख्य संबंध महाभारत के निर्माण से जुड़ा है। कथा के अनुसार माना जाता है कि, अब आप कहेंगे कि इस त्यौहार को 10 दिन क्यों मनाया जाता है, तो इसी पर मैं धीरे धीरे आ रही हूँ और बता रही हूँ कि कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास को महाभारत जैसा महान और विशाल ग्रंथ लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की ज़रूरत थी जो बिना रुके निरंतर लिख सके। इसके लिए उन्होंने बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। अब गणपति बप्पा तैयार हो गए लेखन के लिए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि उनकी कलम एक पल के लिए भी रुकेगी नहीं। इस पर वेदव्यास ने भी चतुरता से एक शर्त जोड़ दी। वो क्या शर्त थी? वो शर्त थी कि बप्पा हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। जो भी श्लोक लिखा जाएगा उसको वो समझकर लिखेंगे। इस प्रकार बप्पा जब कठिन श्लोकों का गूढ़ अर्थ समझते, उतने समय में वेदव्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते। और ये कठिन कार लेखन का जो काम था, लगातार 10 दिनों तक बिना किसी विश्राम के चलता रहा। लगातार लिखने के कारण बप्पा के शरीर का जो तापमान था वो बढ़ गया। अनंत चतुर्दशी यानी 10वें दिन को जब ग्रंथ पूरा हुआ, तब वेदव्यास जी ने बप्पा को शीतल जल से स्नान कराया ताकि उनके शरीर की तपन शांत हो सके। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हम 10 दिनों तक बप्पा को घर में विराजित करके उनका ध्यान रखते हैं, 10वें दिन जल में विसर्जित करके उन्हें शीतलता देते हैं। इसके साथ ये भी मान्यता है कि 10 दिनों के लिए गणपति जी महाराज अपने धाम कैलाश पर्वत से उतरकर सीधे पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के बीच रहने आते हैं, और 10 दिनों में भक्त बप्पा को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा करते हैं। उन्हें मोदक और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, दुख दर्द साझा करते हैं। 10वें दिन बप्पा भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर पुनः कैलाश लौटने की तैयारी करते हैं। इसलिए भारी मन से लेकिन अगले वर्ष जल्दी आने का वादा के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, भारत में गणेश चतुर्थी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे कई स्थानों पर बड़े पैमाने से मनाई जाती है, और इसको मनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो इस प्रकार से गणपति बाप्पा को मोदक चढ़ाया जाता है, गणेश चतुर्थी की मिठाइयों में मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, भगवान गणपति के सम्मान में सुखकर्ता दुख हर्ता नामक मराठी आरती गाई जाती है। गौरी का भी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गौरी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जो देवी दुर्गा का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, इस तरह से गणपति बप्पा का कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे 10 दिन तक, और अंत में गणपति बप्पा को फिर से आने के लिए वादा करके गणपति बप्पा को कहा जाता है कि

हे भगवान, तुम अगले बरस फिर से आना और हमारे परिवार की रक्षा करना और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना। गणपति बप्पा मोरिया पुंधच्या वर्षी लवरकर, या ऐसी कुछ प्रार्थना की जाती है गणपति बप्पा से।

दोस्तों, गणेश चतुर्थी भक्ति, संस्कृति और एकता का त्यौहार है। भगवान गणेश हमें ज्ञान, दृढ़ता और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सिखाते हैं। पर्यावरण संरक्षण और एकता पर जोर देते हैं और इस त्यौहार को मनाकर हम इसके वास्तविक सार को संरक्षित कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर गणेश चतुर्थी को हर्षोल्लास और जिम्मेदारी के साथ बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकें। और गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए फिलहाल गणपति के बारे में मैं जो और बहुत सारी बातें साझा करना चाहती थी, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। फिलहाल हम बढ़ेंगे। जी हाँ, आज हमारा एक राष्ट्रीय पर्व यानी हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है, उसकी ओर चलते हैं। दोस्तों, हर साल की तरह इस वर्ष भी हमारा देश राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है। आज विश्व स्तर पर हिंदी भाषा अंग्रेजी मंदारिन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 609 से 610 मिलियन से भी ज़्यादा है। इस दिन को मनाने में का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करें और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग को बढ़ावा दें। साथ ही ये भाषा पर हमें अपनी जो राजभाषा है उस पर गर्व होना चाहिए। हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देने का

संकल्प हमें लेना चाहिए। दोस्तों 14 सितंबर 1953 को इस भाषा की हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई थी। इस दिन को मनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया था। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को रेखांकित किया गया और इसे मनाया गया। तो आइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हम आपको देते हैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के साथ राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ।

हम श्रद्धा नमन करते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और दोस्तों, आज राष्ट्रीय पर्व की बात कर ली हमने, धार्मिक महोत्सव की बात कर ली, और आज सांस्कृतिक उत्सव भी है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हिंदू धर्म में हर तालिका तीज का भी विशेष महत्व है। और जो आज 14 सितंबर को हमारी सुहागिन औरतें इस अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, जी हाँ, इस व्रत को निभा रही हैं। 14 सितंबर यानी आज के दिन ये हर तालिका तीज भी मनाई जा रही है। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना और सुयोग वर की इच्छा से ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नाम को लेकर मन में सवाल आता है कि आखिर इसका नाम हर तालिका ही क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा की मान्यता है। माना जाता है कि हर तालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका, जिसका अर्थ है हरत माने हरण कर लेना यानी चुरा लेना, आलिका माने सखी। इस प्रकार हर तालिका शब्द का अर्थ है सखियों द्वारा हरण करना। अब इसके पीछे की कहानी ये है, शिव पुराण में लिखी हुई हर तालिका व्रत की कथा के अनुसार ये व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। और इस व्रत और तपस्या को करने के लिए माता पार्वती की सखियां उनका हरण करके उन्हें वन में ले गई थी, जिससे कि पार्वती बिना किसी बाधा के अपनी तपस्या करें। तभी से इस व्रत का नाम हर तालिका तीज पड़ गया। दोस्तों, हर तालिका तीज का व्रत सौहागिन स्त्रियां भी करती हैं, और अपना मनचाहा व्रत वर पाने के लिए अविवाहित लड़कियां भी माता पार्वती जैसा आदर्श पति, जिन्हें भगवान शिव जैसा पति मिले, उसके लिए व्रत भी करती हैं। तो आज हमारी जो सुहागिन महिलाएं हैं, अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए, और अविवाहित युवतियां अपने मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत रह रही हैं, हर तालिका व्रत कर रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं। तो हम हर तालिका व्रत पर भी अपनी सभी सखियों को देते हैं शुभकामना। तो दोस्तों, आज हम हिंदी दिवस की, साथ में गणेश चतुर्थी की और हर तालिका तीज की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का अंतिम गीत यानी जो पहला सेगमेंट है, इसका अंतिम गीत मैं आपके लिए पेश करते करते आपकी दोस्त सविता आपसे विदा चाहूँगी। और मेरे बाद 8 बजे से 9 बजे तक की जो कुर्सी है वो संभालेंगे आपके अपने प्रिय साथी जी रोशन मुरार का। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं कुर्सी छोड़ूं और कब वो इस कुर्सी पर आसीन हो। तो हम फिलहाल आपकी दोस्त सविता आपसे लेती है विदा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे जो त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, पर्व हैं, उन्हें उत्साह के साथ मनाते रहिए और ज़िंदगी को मस्ती के साथ जीते रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। मैं कोई गया हुआ वक्त नहीं जो लौट के फिर ना सकूं। 17 तारीख को फिर आऊँगी, आपकी दोस्त सविता।

जी हाँ दोस्तों, दिल नहीं बहलता, प्रोग्राम अच्छा हो जाता है, आपसे बातें करके अच्छा लगता है, क्योंकि आपको आना है हमारे पास। नंबर आपको पता है ना, नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 2213-1341 नंबर है हमारा, जहाँ आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का इंतजार करेगा आपका अभी से लेकर 9 बजे तक। तो डायल कीजिए ना, इंतजार किसका कर रहे हैं, सुनिए तो भाई।

0: चलिए दोस्तों, हमारे कोई टेलीफोन पर साहब दीवाने आ गए हैं हमारे प्रोग्राम के, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या,
1: बिलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई।
1: आज तो एक बहुत ही महापर्व है
0: जी, जी।
1: गणपति बप्पा की, आज उनका आगमन है हुआ है, तो मैं कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: कि ये जो भगवान गणेश जी की पूजा होती है, जो हम सबसे पहले करते हैं, शुरुआत इसका आरंभ होता है, राइट। उसके बाद जितने सारे पूजा होते हैं, इनके पीछे केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें गहरा जीवन दर्शन भी है। क्योंकि भगवान गणेश जी जो बुद्धि, विवेक, धैर्य, समृद्धि और मंगल के प्रतीक है, वो हमें दिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से और विवेक से भी
0: अर्जित
1: किया जाता है।
0: जी।
1: और हम लोग सब जानते हैं कि गणेश जी की जो विशाल मस्तक है, वो हमें यही दिखाते हैं कि हमारी सोच विशाल होनी चाहिए।
0: क्या बात है।
1: और उनके जो कान है, बड़े कान, वो हमें ये सिखाते हैं कि अधिक सुनो और कम बोलो।
0: क्या बात है।
1: और उनकी जो छोटी आंखें हैं, जो इतना क्यूट लगता है, तो वो हमको सिखाते हैं कि फोकस, जो एकाग्रता है। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर हम लोग अपने जीवन में इसमें अंदर ले ले, अपने जीवन
0: के अपने आप ढाल ले अपने आप में,
1: जी, तो शायद दुनिया और भी खूबसूरत होगी।
0: जी
1: हाँ। और आज क्योंकि कलकत्ता में तो गणेश जी की पूजा एक दिन का है, लेकिन मुंबई में, पुणे में ये तो एक महापर्व है। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो जो भी बाहर रहते हैं, जो मुंबई, पुणे और बाकी देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी, सबको गणपति फेस्टिवल का बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी।
1: जी। और आज क्योंकि ऐसा दिन है, तो एक गणपति बप्पा का गाना बनता है, तो मुझे वो बाजीराव मस्तानी का जो गजानना है वो

0: की ख्वाहिश है।
1: चलिए ठीक है, सुनवाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं मंगल के आधार, गणपति के आशीर्वाद से खुशियों की हो बौछार। जहाँ गूंजे
0: बप्पा मोरिया,
1: जहाँ गूंजे बप्पा का नाम वहाँ हर मुश्किल हार, आओ मिलकर करें गणपति का आज भव्य सत्कार। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: चले दोस्तों, कोई कॉलर फ्रेंड हमें याद कर रहे हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ हेलो भैया जी, नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ तो आज भैया जी गणेश चतुर्थी की पूजा है, उसमें आप लोग का मैंने बधाई हो भैया जी, मैडम जी को भी बधाई हो।
0: जी जी
1: हाँ, तो हम लोग आज कल पूजा के लिए सब इकट्ठा होके पूजा कर रहे हैं आर्मी कैंप में। उसके लिए आप लोग का भी, उसमें भी आप लोग का बधाई हो
0: एकदम
1: एवं और सब। अभी खाना का प्रोग्राम है, कल फंक्शन होगा, 7 दिन हम लोग का पूजा का गणेश जी रहेंगे।
0: तो ये बताइए जनाब, गणेश जी से आप क्या मांग रहे हैं?
1: हम गाना सुनने मांग रहे हैं भैया जी।
0: गणेश जी से गाना सुनने मांग रहे हैं?
1: हाँ?
0: अरे वो तो हमसे मांग रहे हैं, भगवान श्री गणेश। हाँ,
1: अब गणेश जी को सबको अच्छा रखे, सुस्त रखे, और हम लोग का आर्मी में जो बॉर्डर में है वो लोग को भी तंदुरुस्त रखे
0: एकदम।
1: हम लोग आप लोग को भी मैंने तंदुरुस्त रख सकता है, यही प्रार्थना है गणेश जी से।
0: चलिए
1: सब बाल बच्चे ठीक रहे।
0: ओके जी, नमस्कार।
1: यही कहा, नमस्कार नमस्कार भैया जी।
0: हमारे जीवन से विद हर हर लेना, हर कदम पर सफलता देना, मन में विश्वास और चेहरे पर मुस्कान देना, और अपने आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय करना। आइए सुनते हैं एक और गणपति का गीत।

दोस्तों आप भी सुनना चाहते हैं अपने मनपसंद गीत, तो आइए फटाफट डायल कीजिए 2213-1341, जहां कार्यक्रम छायालोक में आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग रोशनी जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं मनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांसाई हावड़ा से।
0: आ गए मनिरुद्दीन, बोलिए।
1: आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए
0: जी,
1: और इतना बेहतरीन प्रोग्राम लाने के लिए। आपको पास है तीर्जाम फिल्म से दुनिया की ऐसी की तैसी, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज में बप्पी लहड़ी के सुर का अनजान का गोविंद और नीलम का
0: दिन। एक बात बताइए, ये सब क्या आप नोट डाउन करके रखते हैं या आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिट है, मतलब सारे गाने कौन किसने फिल्म की थी?
1: ये आपके लिए तोहफा पहले से रख देना होना पड़ता है।
0: अच्छा, ओके, मतलब प्रोग्राम में आने के पहले ही आप ये सब रेडी कर लेते हैं, है ना, लाइन मिलाने के पहले ही?
1: हाँ, हम आपके लिए हमारे तरफ से आपका तोहफा है।
0: अच्छा, ओके, ये गाना तोहफा है ना। अच्छा, और कुछ, और कुछ नहीं बोलेंगे? मौसम कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं, कुछ शेर शायरी?
1: तो उत्सव का मौसम हो रहा है और आने वाला आज गणेश चतुर्थी है और आने वाला पूजा के शुभकामना देना चाहता हूँ अभी आपको और सभी को।
0: अभी से स्टार्ट
1: देखिए, ये लाइन मिले या ना मिले एडवांस कुछ करना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं, एकदम सही है, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है मनोरंजन, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू, कुछ रहे, मस्त रहे, इसी तरह प्रोग्राम चलाते रहे और आप जल्द से जल्द आते रहे हमारे लिए।
0: धन्यवाद।

दोस्तों मोनिरुद्दीन ने तो अपने गाने की पसंद की फरमाइश कर दी, आप कब आ रहे हैं नंबर बता दूं, नंबर है 2213-1341, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2213-1341। प्रोग्राम चल रहा है अच्छा हेलो, और आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है। वक्त बहुत कम है, 9 बजे तक केवल मैं आपके साथ हूँ, आइए फटाफट।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: दोस्तों, फूलों की खुशबू रहे, खुशियों का संसार रहे, बप्पा का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ रहे। जो भी मांगा दिल से, बप्पा उसे पूरा करें। हर घर में सुख शांति और प्रेम की बहार रहे। गणपति बप्पा से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे मन में प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता हमेशा कायम रहे। तो आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरार का कोई है आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा किसी शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
1: क्या?
0: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
1: मैं क्यों लिखूंगी?
0: तो ये सारे कार्ड्स,
1: वो तो
0: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी।
1: नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
0: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?
2: দিল জেলে সিনেমা সাউন্ডট্র্যাক থেকে শিল্পী কুমার শানু অলকা ইয়াগনিক।